Tlen xue satsuan chi kukia kandiyo karan da kanyi chorn gulm si zhe kandiyo tin kati al tin sa la kandiyo zhe anu teya kandiyo zhi pengs lepsa ti zhi mitzeri tsiya kandiyo tlen zhe gagin tsuge ti. Tana mi zhi gala ta kandiyo satsuan chi rai chi stalko zhi da ta mi nago dila zhi mechon degu zhe Cleveland Cliff su zhe san zhe zhi da zhi uki khande 2024 san nago indiye san zhe ये ला ये कई दिखाने गए थे डॉनल्ड ट्रंप के द्वारा टेरर से मिला उसने तो सी डॉग को अपने जी कहने विचार कहने से वहाँ साजी तें दाए के चिया लगो लीलां दिए नहीं लगी थी कुछ कहने तो शुरू तें ऐसी तस्सी जाई इतने कहने गए जी कहने तस्सी ने जी कहने चाहिए थी कहने गए सी को आखों को आता कहने जो वर्ड्स के जी कहने कहने तो जी उसे चलें शायद Carson Nugis, it's not the second poet because the SCSC, the second country got the country Nobel Prize, the cleanness, it's a technical literature, the Gwinnett No. At the World Reporter, get the senior producer of the Sam Junak, which is Carson, you got in the condition, the Ziati Kundi, because I don't see the Italian business in the. Et tu connais, tu n'as pas de temps à faire des choses.